नागिन कितने शॉट्स पिए नागिन फिर कभी बाएं फिर कभी दाएं नाचे तू जैसे नागिन कहीं तेरा फोन है कहीं तेरे शूज है थोड़ी गुस्से थोड़ी कंफ्यूज है लगती है प्यारी पर उड़े तेरे फ्यूज तिलक करे ब्रेक तू ब्रेकिंग न्यूज है तेरे प्रिटी फेस पे फंस गया गलती हुई मैं तुझे देख के हंस गया मेरे सिचुएशन पे ना लाफ करो मुझसे दूर रहो मुझे माफ करो।

0: तपाईँ अहिले हेलम्बु एफएम 89.6 मेगाहर्ज सुनिरहनु भएको छ।
1: अब रंग थेसु मुला रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माइ फेथ नला विश्वासी समक बसुगो सेम पराब लवत देन कदर लव गुङल भिन्नता जयमस्ती तथा नमस्कार लासो फ्याफुला कार्यक्रम स्पार्क माइ फेथ तथा जीवनला क्षण गरेर श्रृङ्खलालाई अङ्क 38 रंगले स्वागत मुलाङ वियोग तामाङ रङला लुइरी चुरङमा मिगदी मुला जो से रङ सेम पराब लमुला तासै खेनी गदी से रङ याकरगी मिला रुबी हाला मुसुला विवत ताम्द महत्व अपिन मुला हालैरी रङला लानन दुई देन तिङ लगानी लासिला कि आलासिला विवा निर्णय लामा थे मिगदी दा दमसुगो जोसे रङ द कदर लमुला थे मिगदी से जोसे रङला लक्ष्य गदे दा आत्मिक रूपी समर्थन लबरी समर्थन लमुला छन्दिर्वा मुला थे निगदे जोसे रङला महत्वकांक्षा दा वसे मुला थेन्दे प्रोत्साहन लमुला थे निगदे से रङ नङरी गे लाजीवल परमेश्वर आत्मा मृङ्गुला थेन्दे थे निगदे से परमेश्वर से रङ दा पिन्सुबा बल बाता सम्मान लमुला हिब्रू 10:24 यङसे गिक सेन गिक द माया लबेन जेब गे लवला लागरी आठ खबा खामला ताम जे लाई रङ कदर लदोबा मि तिगहिनबा जोसे रङ निरन्तर प्रोत्साहन लबरी मैजीबा मुला जब रङ डिप्रेसनला अवस्थारी ब्लुम्बा थेनी गरेसे रङला लागि प्रार्थना लबरी रङ देन परमेश्वर वचन साझा लबरी रङला लागि हाइमा दमन हाजिर तला रङला देन ख्रिस्ट शरीरला लागि रङ कति महत्वपूर्ण मुसिला विषय ताम घरी घरी डन्न लाला लारन निगदे मुला जोसे रङ द चुर सोचब लबारी लगब लमुला कि थेनी गदेसी रङदा मूल्यवान मनमुला तसै नङरी नङ्रिन थेनी गदेसी रङ सम्मान अलामुला रङ थे मिगदेसी हरङलसी वसे मुला थेनी गदेसी रङदा विभव प्रशंसन शब्द गदेरी लानन ध्यान अपिन सिगो बरु थेनी गदेला गे गदे सिगो देन चु तम अवलोकन लसुगो कि थेनी गदेसी रङदा विभव प्रशंसल शब्द गदे थेनी गदेसी रङ देन लाभा व्यवहार देन मेल सबाला कि आज मुला याकर्की विवाह मुला कि शब्द कदे भन्दा गेसी गेन स्वरी पङमुला हलाइसे रङदा रङला सुइसे पङबरी लानन सजिलो मुला तसै थेनी गदेसी रङदा हरङ मूल्यवान मनमुला विवतम थेनी गदेसी हरङ रङ प्रति लभ व्यवहार ज्ञान निर्धारित तमुला जब रङ थेनी गदेला रोला आवश्यकता तमुला थेनी गदेसित लभ निर्णय गरेर ध्यान से सिगो तिगा थेनी गदे रङ आवश्यक तब रङला बहुमूल्य दुई ग्लाभ तयार मुला तिगा थेनी गरी मुला नि दुई रि नोन रङ रो लबरी तयार तामुला वा तिगा रङ सुखतामा जेखेन थेनी गदे रङ देन लाबरी इच्छुक मुस्युला थेन जब रङ रो तोला तब थेनी गदे आतामुला थेनी गदे माबा मुला रङ साचिन महत्वपूर्ण अपिम्ब गदे नोन रङला लुइरी ओत्ते बेला जेखेन माङमुला जब थेनी गदे दा तिगै तोला थेन्दे थेनी गदे मनमुला कि रङ से थेनी गदे दा आवश्यक तब रो पिनबरी हम्स्युला जब थेनी गदे निरन्तर चुराङलासी व्यवहार लामुला चु याकर्की प्रदर्शन हिन्बा कि थेनी गदे जेखेन राङलन स्वार्थी इच्छा गदेला बारेरी चिन्तित मुला फिलिपी 2:3 ओछे रङला जे ग्याम च्यासी गे लबदेन रङ जे ग्रेन बिसी थमानगो तर रङ भन्दा सन्दो द ग्रेन मन्सी सोझो तसी च्यु रङ द साचिन मूल्यवान मनमगदे थे हिन्बा जो रङ ग्याम तिगै नोन सेम लबला दुईरी हनङ दोमुला थेनी गदे रङला बारी सोधपुछ लमुला तिग्दौ सेम थेनी गदे साचिन रङ हरङमा मुसुला बिसी वास्त लमुला थेनी गदे रङमा रो लबरी उत्सुक तमुला रङसी दत्ते थेनी गदेला लागरी लसुबा गेला लागरी थेनी गदे साचो कदर व्यक्त लबरी योनन तयार लमुला जोसे रङदा साचिन महत्वपूर्ण पिनमुला थेनी गदेसे रङ देन दुई बिताप बारी रङला लुई द प्राथमिकता पिनला जोसे रङदा महत्वपूर्ण अपिनमुला थेनी गदेसे रङदा निरन्तर रङ लानन व्यस्त मुर्वा बिसी बाहना पिनमुला जब हालाइसे बिमुला कि व्यस्त मुला थेनी गदेसे वास्तविक टिका बिमुला विषम थेनिगजेला लुइदी स्यान्दो तिगै राङ भन्दा महत्वपूर्ण मुला राङला दुई लान महत्वपूर्ण मुला विशेष लसी जब राङ राङला दुई परमेश्वरला मिगदेला सेवरे प्रयोग लाभन मुस्युला सैतान द थेनिगदे ग्लाग्याम राङला दुई योना लबरी थापिन्सु दयासेला सम्बन्ध गरी ग्याम अलग तस्युगो थेनी थेनिगदे थेमिगदे तेन बदलाव लस्युगो जो राङ्ग्या किनबाला सट्टा राङला सेवा लाभरी से मुला एफिसी पाँच धेरै एक्काइस एनिगदे श्री ख्रिस्त मान लबसे लमा रङ रङ नङरी निक्सेन निग्दा तबरी च्यु ईश्वरीय सम्बन्ध तब त मुला जब रङ निसे एक अर्कला सेवा लसुला आमेन रङ्गिला जीवन री परमेश्वर जी प्रशस्त आशिष पिन्छु गई
2: प्रभावशाली बाइबल शिक्षक सोवन भिक्टर यम लिखित सन्देश याङ्ला भाषारी न्यान्सुरी कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ कार्यक्रमलाई बारे रे राङ्गिला केही प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव मुसाम घन्दा सम्पर्क लसिगो घन्दा फोन नम्बर मुला 98685353 हस् त त्यो समय रिङ बिदा ताजी राङ्गी छङ्मदानु जयमसी नमस्कार।